मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सब

हो मैं जाते हो मैं करूँ कमाए हो मैं बंदा फिर पर जो नहीं पाए हो मैं कितु बजाए किसन में जाए हो मैं हुक्म है पे ये किस पर आए हो मैं जिद रोग है दारू पी समा कृपा कर जा अपने तक उनका

मूर पंडित मुंदी दो किसने के प्यार धर्म धर्म करेगा वावे मंगे मुगदवा जत जावे दुख ना जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा करोगे कितना कोई आके पद परवाना पीछे पाई गया था नानक तो ले जा पे बसवती के नानक।

नानक मेरे शरीर का एक रथ दवा दुख दुख फेर बताइए ज्ञानी बुद्धिता सतगुरु दिन तू का धर्म गितवा उसके तेरा जग का जोर गितवा द्वापर तपे का सत गितवा कल ग्रथ का मूल गितवा शाम के स्वामी सतना छात्र रे।

0: छत के तल डूब ना पहला पहला सुता पर सुते बैठा सुते के खुद पूरा मिट जाए सुते और बुझे वेला का मन करू उठे जाए से प्यार किसे लगा दो अंधे तो पानी देवता जो संत देवता लू पंजमा पाए कृत ता हो अपार
1: पापी सोतल गड्या तो का भय तेते नानो तिर बिना मेरा रसखा नान के वजानिए
0: पंड मंगल रहा पंडो में दोष के पंडो चले रहा पंड मुआ पंड पल गए पंड को बना बंदा आखिए मेरा जान पंडो

0: सगळ्या पावलकी असले नानक निरपाव निरंकार सच एक पहला पहला
1: नानक निरपाव निरंकार और के श्री राम रुमाल के क्या कर्ण कहानी है के तेबे चार के तेरे चरण से गुण पूरे ताल बाजारी बाजार माइकले बाजार

0: अथक सकलेश्वर होए कुट रजाई सिद्धन होए नचन कुदन मन का चाओ नारक गिर मर भाओ जिना मन भाओ
1: पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाय ले नरक न जाइए ज्योपन सब तिस्ता देखा जे आग वाइए।

0: ज्ञान तो कैसो जनो इत संयम दुख जाए।
1: औड़ी सेव की तीसर तो खई गिनी सज्जो सज्जाय। मुनि मंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। मुनि दुनिया तोड़े बंधन ना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला निद वह कलिश्वाया। बढ़ियाई

पाया, बार जात को पीले आया, वृंदावन में रंग किया, काल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो पाया, नीर वस्त्र कपड़े पहरे

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारा विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, विखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माणा ने माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

बड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तुम्हें मेरा माणा तुरबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुरबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई एक पुत्र तुझे पिहाऊं नानक के प्रसरा सपदाते नानक

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना फर्तन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन पाल साखी।

मज्जन होत साधु तुरे आवण जानो रेत पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा ते दिनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास तां सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। ओ वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच ओ दुखां नू दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

जाए ना दुखताए ना मेरा ते सुनाए गुरमति शांत वसे सरी गुरमति शांत वसे सरी शब्द चीन फिर लगे ना पी आए ना जाए ना

ते जन कब हूं नहारे ते जन कब हूं नहारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा ते जन कब हूं

शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाने की मन गोए लाल जहां को कौ चढ़ाए और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल

हाथ खिलाने का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी शस्त्रां का धनी हाथ खिलाना। मेरा नाम गोविंद सिंह।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी हो दियो, आज भले इनी हो दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

निकले प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुधार निकले आज आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं के प्रसाद सुधार रही इन्हीं के प्रसाद सुधार रही इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

आपस को जो जाने नीचा सौ गणिए सब ते ऊंचा। अपने आप नू जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वाहगुरू वालों उन्हों दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाना होए अनार दा। अनार दा दाना अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता च लिया के मिट्टी च रोलिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरू ने उसनू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाना होए अनार दा होए धूड़ धूड़ी विच टसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सैस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यों ज्यों लइण तोड़ फल त्यों त्यों फिर फलिए हसे निव चलन गुरु मार्ग दसे निव चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवा जग विच वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया वड़ेवे दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टिंडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच भी वेलिया गया वड़ेवा दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तंबाया टिंजन पिंज उड़ाया।

ध्यान रखो गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे साफ फरमाते जे जे तुमरे ध्यान नित उठ ध्याए है संत जे जे तुमरे ध्यान का नित उठ ध्याए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नित जपिए सांसिए।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।